0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रुदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
3: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
3: कल्चर ऑफ पंजाब

0: पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मैंने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जर्नल पढ़ा जिसमें राइटर ने लिखा था कि मैं ऑफिशियली बड़ा होने से रिजाइन करता हूँ और वापस एक 8 साल के बच्चे वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो जिंदगी जब लाइफ बेहद सिंपल थी, फुल ऑफ कलर्स, लॉट्स ऑफ फन, व्हेन लाइफ टर्न्ड इट लुक्ड लाइक अ फेयर और हर इंसान अच्छा और ऑनेस्ट लगता था। कोई डिप्रेसिंग न्यूज, बीमारी, गॉसिप नहीं थी, तो बस प्योरिटी, स्माइल्स एंड ड्रीम्स। याद आ गए ना वो सारे पुराने दिन, क्योंकि आज भी उम्र चाहे हमारी बढ़ गई है लेकिन दिल में एक बच्चा तो अभी भी कहीं छिपकर बैठा।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
4: किसी ने राइटर एर्मा से पूछा कि अगर उन्हें लाइफ फिर से मिली तो वो कैसे जीना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वो बात कम करेंगी, सुनेंगी ज्यादा, किसी भी चीज के टूटने पर चिल्लाएंगी नहीं सब पर, और अपनी जिंदगी में सॉरी, थैंक यू एंड लव यू इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक मिनट, हर एक लम्हे को फील करके जीना चाहेंगी। वेल, आई एम श्योर कि अगर आप भी एर्मा की बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस आज से ही लानी शुरू कर देंगे बिफोर इट गेट्स टू लेट।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अक्सर हम लोग एक भ्रम, एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जो सच्चाई और रियलिटी से बहुत अलग है। माई वर्ल्ड, माई हैप्पीनेस, माई लाइफ, इनफैक्ट माई, मैं, मेरा, यहीं तक सीमित है हमारी दुनिया। पर जरा सोचें कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। डूबती हुई कश्ती को पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: जब हम लोग अपने पर टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ वो टाइम इंक्लूड करना चाहते हैं जो हम अपनी हॉबीज पर स्पेंड करते हैं, साथ ही साथ कुछ वक्त बिताएं सच में अपने सेल्फ एनालिसिस पर भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद को अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं होता, और अगर ऐसा है तो सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि जिंदगी भर बस यूं ही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे।

0: culture of Punjab. Aapka daily entertainment dose.
1: स्मार्टली जीना है तो जिंदगी में कोई मकसद या एम जरूर होना चाहिए, और जो लोग अपनी जिंदगी का मकसद नहीं जानते हैं, जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक कुआं है जहां आज नहीं तो कल वो गिरेंगे ही गिरेंगे। और सिर्फ एम नहीं, उस एम को अचीव करने के लिए चाहिए ढेर सारा पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सी पॉजिटिव सोच, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस बात से सहमत होंगे कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ता इरादे। मेरी किस्मत नहीं मोहताज, मेरे हाथ की लकीरों।

लाइफ, हे अपनी तो एक ही लाइफ, एक ही लाइफ, एक ही लाइफ, रोना तो ना बाबा, आई डोंट लाइक, अपनी तो एक ही लाइफ, एक ही लाइफ, एक ही लाइफ, रोना तो ना बाबा, आई डोंट लाइक, अपनी उम्र है 22, थोड़ा सा मैं हूँ वाइस, थोड़ा सा बैड हूँ, थोड़ा सा मैं हूँ नाइस, टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराना, टेंशन वेंशन क्यों लेती है जाने जाना, चार दिन

0: पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरी एक फ्रेंड है जो अक्सर बेहद खुश रहती है। जब उसे मैंने पूछा कि उसके लिए खुशी के मायने क्या हैं और वो उसे कैसे हासिल कर लेती है, तो पता है शी सेड कि जहनी सुकून तभी मिलता है जब कोई टेंशन ना हो, आपका दिमाग तमाम उलझनों से खाली हो और आपके दिलो दिमाग एक ही चीज पर राजी हो। एंड शी सेड कि अपनी बात करूं तो जब कोई टेंशन हो जाती है ना मुझे, तो उसको जहन से निकाल कर बाहर फेंक देती हूं और फिर उस सुपर पावर से तन्हाई में अपना दुख बांटकर सब कुछ उन पर छोड़ आराम से सो जाती हूं।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ YouTube ਤੇ।
4: कहते हैं बात हमेशा खुलकर कह देनी चाहिए ताकि किसी किस्म की भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे, क्योंकि अजम्पशंस पर अगर कोई रिश्ता बेस्ड होता है ना तो वो दोनों बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, आप भी सामने वाला भी। काश कि तुम नम आंखों से बस इतना कह देते, मैं खामोशी से सुन लेता, गम सह लेता, दुख चुन लेता, कुछ दर्द के आंसू रो लेता, तुमसे शर्मिंदा हो लेता। तुम कह ना सके, हम रो ना सके, तुम्हें अफसोस है हम शर्मिंदा, पर बात क्या हुई, दोनों ही शब भर सो ना सके।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: मिलना बिछड़ना चाहे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर कभी कभी कोई शख्स आपकी जिंदगी में ऐसा आता है जो पता होता है कि ज्यादा साथ नहीं निभाएगा, पर फिर भी उससे जुदा होने का जस्ट एक ख्याल ही मन में आता है ना, तो रूह सी कांप जाती है। लगता नहीं कि साथ निभाएगा देर तक, लेकिन वो मुझको भी भूल ना पाएगा देर तक। जब भी करीब आएगा उसके कोई शख्स, जरूर वो मेरी दास्तां सुनाएगा देर तक। किस हाल में मैं हूँ उससे बिछड़ने के बाद, सुन के उसे यकीन आएगा देर तक।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। इतना आसान नहीं होता किसी को भुलाना, चाहे आप उस इंसान से कितने भी खफा क्यों ना हो, क्योंकि एहसास पता है बायस्ड होते हैं। तुम्हारा नाम लिखता हूँ मैं कागज पर, देखता हूँ, सोचता हूँ, वो कागज फाड़ देता हूँ, फिर उस कागज के टुकड़ों को मुट्ठी में भींच कर फेंक देता हूँ, वहीं पर बैठकर लड़ता हूँ खुद से, पर फिर न जाने क्या सोचकर वही कागज उठाता हूँ, मैं आंखों से लगाता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, फिर उसको पानी में मिला उसको तावीज़े मोहब्बत जानकर पी लेता हूँ, गुस्सा, गिला, नाराजगी जो भी है तुमसे सब पी लेता हूँ और आंखें मूंद कर सो जाता हूँ।